नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम श्री साई आर्तत्राण परायणाय नमः। ओम श्री साई अनाथनाथाय नमः। ओम श्री साई असहाय सहायाय नमः।

山头来可多。पंढरीनाथ पांडुरंग विठ्ठल भजो प्रतिवास साईदेव विठ्ठल भजो प्रतिवास साई